0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास,
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो.
2: वाकई मोहब्बत पागल बना देती है, ना अपना ख्याल रहता है न दुनिया की परवाह. दिल धड़कता है तो महबूब का नाम लेकर, आंखें झपकती हैं तो सनम की सूरत बसाकर.
3: नदीम शरण की दिलरुबा तर्ज पर गजल की खुशबू बिखेर रहे हैं कुमार सानू.

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
2: जख्मों की गर कोई नुमाइश होगी, अपना दिल पेश करूं ये मेरी ख्वाहिश होगी.
3: इस कदर प्यार करने वाले ये दिल अगर जुदा हों और मिलन की कोई उम्मीद नजर न आए, तो बखौल साहिर वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा.
2: मगर ये खूबसूरत मोड़ कहीं ऐसे दर्दनाक अंजाम को न पहुंचे.
3: शेख आदम आबू वाला की गजल को दिल की गहराइयों में उतार रहे हैं मोहम्मद अजीज.

0: संभालो, दूर दुनिया से चला हूँ।
1: वतन से दूर वतन का एहसास,
2: आपके जज्बात का अक्कास,
1: सदाबहार नगमों की मिठास,
2: जो है हर लम्हा आपके पास।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: और इस हसीन इकरार मोहब्बत के बाद शुरू होता है वादों इरादों और कस्मों का रंगीन सिलसिला।
5: अक्सर ये इरादे नाकाबिले अमल होते हैं, ये कस्में नाकाबिले यकीन होती हैं, मगर फिर भी बड़े ही पुरकशिश, बड़े ही दिलकश होते हैं ये वादे।
4: शायर है हसरत जयपुरी और आवाज़ आशिक बने हैं अभिजीत।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।

0: the hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
1: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो।
3: ताज्जुब है

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: वतन से दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

बंदर का रूप धारण कर लेता है, खतरा खतरा ही समंदर का रूप धारण कर लेता है, और गांव की बुनियाद पर ही शहर वजूद में

हमने देखा ही नहीं, बोलती उनको अब तक। हमने देखा ही नहीं, बोलती उनको अब तक। कौन कहता है कि पत्थर के सनम झूठे हैं, न शिवालय न कलीसा न हरम झूठे हैं। बस यही सच है कि तुम झूठे हो, हम झूठे हैं। अय्याज झांसी का कलाम, जगजीत सिंह अपने पुरखलूस आवाज में आपको सुना रहे थे। अब पेश खिदमत है लता जी और रफी की आवाज में फिल्म आस पास से आनंद बख्शी का कलाम, लक

0: Islam Muqaddam with Ghazals Qawwalis. Classical music on Asian Radio Live. Every Saturday at 7 p.m.
1: फिल्म चिंगारी से लिया गया है नगमा मेहदी हसन साहब आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे और ये प्रोग्राम एशियन रेडियो लाइव ग्लोबल चैनल से आप तक पहुंच रहा है गुलदस्ते के रूप में हिसाम मुकद्दम प्रोग्राम के मेज़बान हमसे राब्ता कायम करना हो तो बाखुशी ईमेल कीजिएगा hisam@asianradiolive.com अब हाजिर है मोहम्मद रफ़ी की बुलंद आवाज़ उषा खन्ना ने इसका संगीत बख्शा है फिल्म का नाम है पत्थरों का शहर जो जुबान दिल न समझ सके जो न कह सके दिल की बात ये पत्थरों का शहर है।

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पत्थरों के शहर से ये गीत सुना आपने, जिसे लिखने वाले थे इरशाद साहब, संगीत बख्शा था उषा खन्ना ने। अब पेश है गुलाम अली साहब की आवाज में ये गजल, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह।

0: listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
5: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
5: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
5: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
8: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hodson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स टी रूम।
3: Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop. Or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
4: दोस्तों, पेशे लता जी की आवाज फिल्म का नाम है महबूबा। लिखने वाले हैं आनंद बख्शी और तर्ज बनाई है RD बर्मन ने। आपके शहर में आई हूँ शौक से, आपके जौक से, फिर भी डरती हूँ।

आशा भोसले की आवाज के बाद अब पेश है चंदन दास साहब। रेत पर लिखे हुए नामों को पढ़कर देख लो, रेत पर लिखे हुए नामों को पढ़कर देख लो, आज तन्हा रह गया हूँ, कल मगर ऐसा न था। ढूंढने निकला था जिसको मैं, वही चेहरा न था। जगमगाते शहर की रैनाइयों में वे नाम पढ़ देख लो, आज तन्हा रह गया हूँ, मगर ऐसा। ढूंढने निकला था जिसको मैं, वही चेहरा न था। जगमगाते शहर

बाद अब पेश है एक खूबसूरत गजल जिसे अशोक खोसला अपनी मधुर आवाज में आप तक पहुंचा रहे हैं। जहर मिलता रहा, जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी उसे आजमाते रहे। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अशोक

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज। पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.

0: के दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज बेल्स।

0: can do.
1: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274 306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट। जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 4244 53। महमूद रिजवी।
0: You're listening to
1: Bedford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford Asian Radio on Medium Wave 1413 and online Bradford.
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is.
3: And the winner is.
4: And the winner is.
1: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
7: बालियां अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
7: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
7: आपकी शान
6: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
7: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
7: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
9: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679।
9: safewayrider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260 078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम।

0: Ifat Hamid
1: on Bradford Asian Radio.
2: जहाँ पे यूँ ही नहीं बनी हुई है, दिल में और दर्द में ठनी हुई है, यूँ ही रोशन नहीं हुआ चेहरा, कोई तब्दीली बातनी हुई है, अब फलक आ गया है पांव तले, अब सरों पे जमी तनी हुई है, अब कहीं इश्क ने किया है करम, अब तबीयत कहीं गनी हुई है, चंद शाखों के काट देने से छांव कुछ और भी घनी हुई है, एक शक्ल एक नाम एक कलाम ऐसे आसान जान कुनी हुई है, 100 बरस से झुकी हुई थी ए दोस्त आज गर्दन अगर तनी हुई है। इन्हीं खूबसूरत अल्फाज के साथ सामईन आपकी खिदमत में आप ही की मेज़बान इफ़त हमीद हाजिर है प्रोग्राम रंग तरंग लेकर। अस्सलामु अलैकुम। रंग तरंग प्रोग्राम आप एशियन रेडियो लाइव के अलावा ये ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो से आप सुन रहे हैं। सामईन आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ, आपका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सबका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा और यही उम्मीद है कि आज आने वाले दिन भी आप सब के लिए ढेरों खुशियां लेकर आएं और आप सब जहां रहें अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। समाइन आगाज करते हैं आज के रंग तिरंग का मसूद राना की इस खूबसूरत आवाज से। फिल्म है दिल मेरा धड़कन तेरी, झूम ए दिल मेरा जाने बहार।

0: like.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: समीन अभी आप मसूद राणा को सुन रहे थे फिल्म दिल मेरा धड़कन तेरी से। समीन इस वक्त आप ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो से प्रोग्राम रंग तरंग इफ़त हमीद के साथ सुन रहे हैं। अगर अभी भी आपने शिरकत की है तो आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। समीन अगर आप भी अपने पसंद का कोई म्यूज़िक सुनना चाहते हैं या आप कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। नंबर है 07807177883। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और इसके अलावा स्टूडियोज का नंबर भी है 01422181127। आप इस पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं अगर आप अपनी पसंद का कुछ भी सुनना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और अगर आप कुछ सुनना चाहेंगे। सामाइन कहते हैं कि हकीकी दोस्ती तो वो है जो इंसान के बातिन से फूटकर उसके नफ्स की तारीकियां उस पर वाजे करती है, उसे ज़िंदगी से फरागत हासिल करना सिखाती है, रूह के नाम पर इसे नफा साज करती है। हकीकत इन सितारों की मानिद है जो जुल्मत शब के पर्दे से नमूदार होते हैं। हकीकत इस आलम की उन तमाम हसीन चीज़ों की तरह है जो अपने दिलकश असरात उसी शख्स पर जाहिर करती है जिसे बेरहम झूठ की तासीरात का इल्म हो। कहते हैं कि हकीकत वो मख्फी जज्बा है जो हमें ज़िंदगी की मुसर्रतों से लुत्फ़ अंदोज़ होना सिखाती है और जिसके असर से हम ये तमन्ना करने लगते हैं कि ये मुसर्रतें दुनिया के लिए आम हो जाएं। समीन ये तो थी कुछ हकीकी दोस्ती के हवाले से बातचीत। चलते हैं अगले नगमे की तरफ। इसको लिया है फिल्म इम्तिहान से और इम्तिहान फिल्म का ये नगमा मैं खलील अहमद आपके लिए पेश कर रही हूँ। आपके भी प्रोग्राम को पसंद करने का और मैसेज भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया। रोज़ शाम आती थी मगर ऐसी न थी कि आज मेरी ज़िंदगी में कौन आ गया। खलील साहब आपके लिए।

इम्तिहान से ये नखबाब सुन रहे थे। सामिन, प्रोग्राम में कोशिश है कि तंज़-ओ-मिज़ाह का सिलसिला भी जो है ये जारी रहे, ताकि आप जो है ना इसको महसूस अच्छी तरह से आप कर सकें। इसको सामिन, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो से ये प्रोग्राम आप 14:13 AM पर आप सुन रहे हैं, 1413 AM पर आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद, अस्सलामुअलैकुम। व्हाइट हाउस में टेलीफोन की घंटी बजी। ये तंज़-ओ-मिज़ाह की बात हो रही है सामिन जी। जब व्हाइट हाउस में टेलीफोन की घंटी बजी तो सदर ट्रंप ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो मिस्टर ट्रंप, मैं केकर सिंह अमृतसर ज़िला खालिस्तान से बात कर रहा हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि हमने आपके मुल्क के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी खबर है केकर, लेकिन क्या बताओगे कि तुम्हारे पास कितनी फोर्स है? मेरे हिसाब से मैं, मेरे दो भाई, हमारा बापू, मेरे पिंड के लोग और कुछ सरदार, कुल मिलाकर 80 जवान हैं। केकर सिंह ने फोन पर जवाब दिया। अच्छा मिस्टर सिंह, ये बताओ तुम्हारे पास असलहा कितना है? ट्रंप ने पूछा। ओए, हमारे पास करपाने हैं, वाहेगुरु नाल हर किसी के पास अपनी दो दो नाली बंदूक है और 10 ट्रैक्टर, 8 ट्रॉलियां और उसके साथ साथ एक बुलडोजर भी है पिंड वालों के पास। देखो मिस्टर सिंह, हमारे पास दुनिया की ताकतवर जंगी जहाज हैं, मजबूत तरीन टैंक्स हैं और लाखों की तादाद में असलहा है। तुम हमारा मुकाबला कैसे करोगे? वेट अ मिनट, सरदार खामोश हुआ। थोड़ी देर के बाद बोला, ओए कोई परवाह नहीं, हमारा ऐलान जंग बरकरार है, लेकिन देखो तुम्हारे पास सिर्फ 80 जवान है जबकि हमारे पास 1,000,000 फौज है और सिर्फ मेरे एक इशारे के मुंतजर है, फिर सोच लो, ट्रंप ने कहा। अब मिस्टर ट्रंप, मैं अपना ऐलान जंग वापस लेता हूँ, हमें आपसे जंग नहीं करनी। अच्छी बात है मिस्टर सिंह, मैं आपके फैसले की दाद देता हूँ, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने जंग से बाज रहने का फैसला क्यों किया? ट्रंप ने पूछा। दरअसल बात ये है, सरदार साहब ने वजाहत करते हुए कहा, हमारे पिंड में 1,000,000 जंगी कैदियों को रखने के लिए कोई जेल नहीं है। बहुत खूब सामिन, ऐलान जंग था। बहरहाल साथ हमारा निभाते रहिएगा सामिन। अगला नगमा मेहंदी हसन और नाहिद अख्तर की आवाज़ में, ये नगमा जो है ये मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ और ये माहम खालिद आपके लिए ये नगमा है। आपका प्रोग्राम को सुनने और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लीजिए माहम, आपके लिए नजराना फिल्म से ये नगमा। बांट रहा था जब खुदा सारे जहाँ की नेमतें, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी

नजराना में। ख्वाहिशें होती नहीं और हाथ उठा देते हैं लोग, ख्वाहिशें होती नहीं और हाथ उठा देते हैं लोग, बेसबब भी आसमानों को सदा देते हैं लोग। सस्ती शोहरत हाथ लग जाती है तो फिर जा बजा अपने अपने नाम के कुतबे लगा देते हैं लोग। समीन, कुछ इशार थे ये आपके लिए, और अब कुछ और तंजो मिजा की बात जो है ये थोड़ी देर के बाद मैं करूँगी। समीन, लोगों के दिलों में अगर अपना मुकाम इस तरह बना लो कि मर जाओ तो तुम्हारे लिए वो दुआ करें, जिंदा रहो तो मिलने की जस्तजू करें। लोगों को अहमियत दो जितनी अहमियत लोग तुम्हें देते हैं, कम दोगे तो मगरूर कहलाओगे, ज्यादा दोगे तो गिर जाओगे। जी सामिन, चलते हैं अगले नगमे की तरफ। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर की आवाज़ फिल्म आशा से, और आशा फिल्म का ये खूबसूरत नगमा हम पेश करने जा रहे हैं खलील अहमद आपके लिए।

0: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काकी की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज बेल्स।

जिन साजन से सामीन आप ये नगमा सुन रहे थे जिसको हमने रहमत अली आपके लिए और नाज आपके लिए पेश किया। अब कुछ सेहत की बातचीत करते हैं। आज हम जिस फल की बात करेंगे स्ट्रॉबेरी के हवाले से बातचीत की जाती है। सामीन कि स्ट्रॉबेरी के बारे में कहा जाता है कि कुदरत ने शायद इससे बेहतर जायकादार फल पैदा नहीं किया। स्ट्रॉबेरी कुदरत का अनमोल तोहफा है। स्ट्रॉबेरी दुनिया का शायद वो वाहिद फल है जिसे सिर्फ देखने से ही इस बात का एहसास होता है कि ये नायाब और मुनफरिद तरीन फल है। 13वीं सदी में पहली बार इसकी बाकायदा काश्त की गई। हालांकि इस पौधे की तरह ये यूरोप और अमेरिका कई इलाकों में सदियों से गुलाब की फैमिली के एक हिस्से की तरह उगता रहा है, लेकिन पहली बार रोमियो ने इसकी गजाई सलाहियतों की बदौलत इसे फल का दर्जा दिया। ये अपनी गजाइत के अलावा खुश शक्ल और खुश रंग होने की बिना पर भी पसंद किया जाता है। समय मीठा और जो है ये रस से भरा हुआ ये जो फल है ये हर उम्र के लोगों का मरकूब फल है, क्योंकि इसमें गजाई अज्जा भी वाफिर मकदार में पाए जाते हैं, इसलिए सेहत के लिए भी ये मुफीद माना जाता है। तकरीबन 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी में आपको 33 कैलोरीज जो हैं ये मिलती हैं, और इसमें जो है ये इसके जो जायका है, इसका रंग है, बनावट में एक दूसरे से ये मुख्तलिफ ये फल नहीं होता। और स्ट्रॉबेरी तेज़ सुरख रंग और हार्ट शेप का फल है, और स्ट्रॉबेरी मुख्तलिफ इकसाम की डिशेज़ भी इससे तैयार की जाती हैं। स्ट्रॉबेरी जो है ये तकरीबन 100 ग्राम में 3 से 5 औंस, यानी कि अगर आप स्ट्रॉबेरी लें तो उसमें 136 किलोग्राम आप एनर्जी आपको मिलेगी, 7 से लेकर 68 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, शुगर जो है ये 4 से 89 ग्राम आपको मिलेगी, प्रोटीन आपको जो है ना 67 ग्राम मिलेंगे। इसके साथ साथ इसको विटामिन्स जो हैं जैसे पी सी ई और उसके साथ साथ जो मिनरल्स कैल्शियम आयरन मैगनीज फास्फोरस पोटेशियम सोडियम और जिंक भी इसमें मौजूद होता है। तो लिहाजा जो है ये स्ट्रॉबेरी अगर आप खाएंगे तो न्यूयॉर्क के माहिर गजाइत और न्यूट्रिशन का कहना है कि स्ट्रॉबेरी जिस्म के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन सी इस निज़ाम को ताकतवर बनाता है। हैरतअंगेज तौर पर जो स्ट्रॉबेरी है ये आपकी आंखों की भी हिफाजत करती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर सलाहियत पाई जाती है जो आंखों का जो आपका जो है ये लेंस है उसकी हिफाजत करती है। इसके अलावा जो है ये आपकी बसारत को मजबूत करती है। बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ बिनाई कम होने या धुंधला नजर आने की सूरत में स्ट्रॉबेरी जो है ये आपकी बसारत को मजबूती अता करती है। और इसके अलावा जो है ये आँख का जो है रेटिना है उसको भी ये मजबूती और ताकत अदा करती है। और स्ट्रॉबेरी का जो बाकायदा इस्तेमाल है ये कमज़ोर हाफजा को कुव्वत फराहम करता है। जिन अफराद की याददाश्त की जो है वो कमज़ोरी होती है, याददाश्त की कमी की शिकायत रहती है, तो वो स्ट्रॉबेरी का बाकायदा इस्तेमाल करें तो इससे खातर ख्वाह नतायज सामने आएंगे। लेकिन अगर आप इससे एलर्जी नहीं है तो ठीक है, तो ये आपको अपनी सेहत का पता है कि ये फल आपको खाना चाहिए या नहीं। अगर आपको कोई ऐसा मसला नहीं है तो आप ये फल खाएं और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। साथ मेरा निभाते रहिएगा। सामिन चलते हैं अगले खूबसूरत नगमे की तरफ। आजीब बर्मन की मौसीकी में ये नगमा बरसात की एक रात से मैंने लिया है। लता मंगेशकर का साथ दे रहे हैं किशोर कुमार, अपने प्यार के सपने सच हुए। फरजाना सलीम आपके लिए ये नगमा।

ये थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार फिल्म बरसात की एक रात से। एक साहब अपनी बीवी के लिए एक तोहफा खरीदने के इरादे से दुकान में दाखिल हुए। बेख्याली के आलम में उन्होंने एक गुलदान उठाया जो शेल्फ पर उल्टा रखा हुआ था। उसे देखते ही वो हैरत से चिल्लाए, अरे इसका तो दहाना बनाया ही नहीं गया है, इसमें फूल कैसे रखे जाएंगे। फिर उन्होंने इसे नीचे से टटोल कर देखा और दोबारा चला उठे, खुदा की पना इसका तो पेंदा भी गायब है। इस किस्म की चीज़ें रखी जाती हैं इस दुकान में फरोख्त करने के लिए। और वो ये कहते हुए फौरन दुकान से निकल गई। कभी कभी ऐसे भी आपको लोग मिलते हैं। समीन कहते हैं कि अच्छे दिमाग और अच्छे दिल वाला इंसान हमेशा गैर मामूली होता है। जब इंसान को ज़िंदगी गुजारने का हक ना मिले तो वो मजबूरन फिर मुजरिम बन जाता है। गुस्सा जहर पीने के मुतरादिफ है, लिहाजा तवक्को रखना फजूल है कि ये आपके दुश्मन को नुकसान पहुँचाएगी। कहते हैं कि अजीम वो नहीं जो कभी ना गिरे, बल्कि वो जो हर बार गिरने के बाद फिर खड़ा हो जाए, वो अजीम इंसान है। चलते हैं अगले नगमे की तरफ। आइए मेहरबान, बैठिए जाने जान, शौक से लीजिए फिर इश्क के इम्तिहान। सामिन, मधुबाला की एवरग्रीन क्लासिक जो ना, ये फिल्म से एक क्लासिक सॉन्ग आपके लिए पेश कर रही हूँ। और ख़ास तौर पर ये जो नगमा है ये आप पसंद करेंगे। अहमद सईद, यकीनन आप इस नगमे को पसंद करें।

जी कैसा लगा ये नगमा आपको? एवरग्रीन क्लासिक सॉन्ग था और मधुबाला पर इसको पिक्चराइज किया गया था। सामिन, तंजो मिजाज की बात हो रही है कि बीवी का शक दूर करने के लिए, कभी कभी शक मिजाजी जो होती है ये घर में ज़रूर होती है, बहरहाल बीवी का शक दूर करने के लिए शौहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा था। बीवी फोन पर सहेली को बता रही थी कि बहुत ही तेज है मेरा शौहर, अब देखो हूरों के चक्कर में है, अब बताओ इंसान क्या करे। बहरहाल वैसे तो है कि शक की भी इंतहा, इंसान अब किस तरह से अब आपको यकीन दिलाए कि इंसान सीधे रास्ते पे आ चुका है। सामिन, कहते हैं कि शरीफ आदमी की पहचान ये है कि जब इससे कोई सख्ती करे तो सख्ती से पेश आए, जब इससे कोई नरमी करे तो नरम हो जाए, और बड़े आदमी की पहचान ये है कि इससे कोई नरमी करे तो सख्ती से पेश आए, और जब कोई सख्ती करे तो ढीला हो जाए। आदमी की पहचान के हवाले से ये थी बातचीत। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ में ये नगमा फिल्म आंखें से लिया है, और लीजिए आपके लिए ये नगमा आपसे।

0: कभी कभी
1: इफा छामी
2: ऑन ब्रॉडफिट एशियन रेडियो
3: फिल्म आंखें से ये थी लता मंगेशकर। महकमा टेलीफोन के डायरेक्टर ने एक शख्स को फोन पर इतला दी, जनाब कल शाम आपने हमारे ऑपरेटर से सख्त बदतमीजी की थी, इसलिए अगर आप इससे माजरत नहीं करेंगे तो आपका टेलीफोन मुनकते कर दिया जाएगा। उस शख्स ने माजरत का वादा कर लिया और फोन मिलाकर ऑपरेटर से बोला, कल मैंने आपसे यही कहा था ना कि आप जहन्नुम में जाएं। ऑपरेटर ने इसकी तायद की तो वो शख्स दोबारा बोला, तो अब मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, प्लीज आप जहन्नुम में ना जाए। बहुत खूब साबित, ऐसा भी होता है। और कभी कभी जो है ना, वैसे कभी कभी कुछ ऐसे जो लोग हैं उनसे आपको बिगाड़ना नहीं चाहिए। और वैसे भी जब हम किसी से बातचीत करें तो तहजीब के दायरे में रहकर हमें बातचीत करनी चाहिए। एक खातून हर वक्त अपने शौहर से लड़ती झगड़ती रहती थी, उसकी चीखों पुकार से पड़ोसियों की ज़िंदगी अजाब बनी हुई थी। एक मरतबा एक साहब उनके एक पड़ोसी के पास गए और उनसे कहा कि आपके पड़ोस में रहने वाली खातून किस कदर बदतमीज़ और झगड़ालू है, हर वक्त शोर शराबा करती रहती, आप उसे समझाते क्यों नहीं, क्या आप उनके पड़ोसी हैं? पड़ोसी ने पूछा, नहीं मैं उसका शौहर हूँ, उन साहब ने जवाब दिया। बहुत खूब, चलते हैं अगले नगमे की तरफ। फिल्म असली नकली का ये जो नगमा है इसको मैं पेश करने जा रही हूँ सफिया बेगम आपके लिए। खूबसूरत नगमा है मोहम्मद रफ़ी और उनका साथ दे रही हैं लता मंगेशकर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है।

0: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
6: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स।
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274 306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
10: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
11: You're listening to Bradford Asian Radio,
12: 1413 AM. Call today 01274 201 679 or visit safewayrider.co.uk. Safewayrider, helping you secure your future.
9: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
13: Are you looking
3: looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
13: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
14: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
13: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
14: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
13: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
14: 07548419678
13: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है
15: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

जुल्म जब हद से बढ़ता है हिम्मत आ ही जाती है, जुल्म जब हद से बढ़ता है हिम्मत आ ही जाती है, झपटते बाज से चिड़िया को लड़ते हमने देखा है। अस्सलाम वालेकुम सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ केंद्र शायद आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ केंद्र शायद आप डेप पे भी सुनते हैं। जी हां, डेप प्लस पे आप हमें BFD एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं, और फिर साफ और शफाफ आवाज में आप हमारी केंद्र शायद डेप प्लेटफॉर्म पे भी सुन सकते हैं। और अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप हमारा स्मार्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो चाहे आप एंड्रॉइड, दोनों पे हमारे ऐप्स मौजूद हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त, और आपकी ज्यादा मेमोरी स्पेस भी नहीं लेते। और सामीन हमारी इस वक्त की नशात आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के साथ साथ सुन रहे हैं बाय वक्त आपके अपने लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर, और शेफील्ड और राधरम के डेप प्लस पे भी आप हमारी नशात सुनते हैं। तो सामीन इस वक्त आप चाहे हमें कहीं भी सुन रहे हों, प्रोग्राम रंग महफिल लिए आपके मेज़बान सैयद हसन नाज़रें और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की अथाह गहराइयों से खलुस पारा आदा पेश करते हैं, तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप मोहतरम और मज़ सुनने वाले इस वक्त जहां कहीं भी हमारी ये आवाज़ सुन रहे होंगे, हमारी ये नशात सुन रहे होंगे, बफजल खुदा इंशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। हमारी बहुत सी नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं कि आप जहां रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर खुदा न खास्ता आज तबीयत कुछ अच्छी नहीं है तो हमारी बहुत सी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको सेहत व सलामती दे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। और सभी नगर आज की इस बज़ में आप हमारे हम सफर बनना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं, लेकिन चलिए आपको एक बार फिर बताए देते हैं 01274 एरिया कोड है ब्रेडफोर्ड का 01274 3066677 30 66 70 30 66 70 01274 3066 77 के जरिए आज की इस बज़ में आप अपना जलवा दिखा सकते हैं, नंबर मिला सकते हैं। आप सभी सुनने वालों को दिल किया था गहराइयों से खुश आमदीद बताते चलें कि जिस प्यार से, मोहब्बत से, खलूस से, चाहत से आप हमें कॉल करते हैं, उसी प्यार से, मोहब्बत से, चाहत से, खलूस के साथ हम आपकी कॉल आंसर करते हैं और आपसे हमारी बातचीत रहती है। कोई गाना सुनना चाहें, कोई गीत जहन में आ रहा हो, इवन कोई भी बोल भी जहन में आ रहा हो किसी गीत के, बेशक मिडल से आप हमें बताइए, देखते हैं कि हम आपके लिए वो ढूंढ सकते हैं कि नहीं। आइएगा आज हमारे जहन का इम्तहान ले सकते हैं आप, हम ठीक ठाक यहाँ पे बादाम खा के बैठे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और हाँ, अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो और चाह रहे हो कि आप सिर्फ व्हाट्सएप का सहारा लेना चाहते हैं तो भी आप बनफ से नफीस तशरीफ ला सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 00447 800 599 563। दैट्स 00444, आप सभी जानते हैं यूके का इंटरनेशनल कोड है 00444, और उसके बाद 7800 599 563 00447 800 599 563। आइएगा, तशरीफ लाइएगा, और इंशाल्लाह मिलजुल के इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है आज के रंगे महफिल में।

और सामिन अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे, आवाज थी लता की, अपने जमाने का मकबूल तरीन गीत। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुनने वालों को आज का ये पहला गीत पसंद आया होगा। सामिन इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ ये नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ ये नशात आप डेब प्लस रेडियो पे भी सुन सकते हैं डिजिटल क्वालिटी में। और हमारी इस वक्त की नशात आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के साथ साथ सुन रहे हैं आपके अपने लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर, और CVFM मिल्सबरा से 104.5 FM पे भी ये नशात इस वक्त रिले की जा रही हैं। अपने सभी सुनने वालों को आज के रंगे महफिल में खुश आमदेद। कोई भी गीत सुनना चाहें, कोई पसंद हो, कोई फरमाइश हो तो हमें बताइएगा। स्टूडियो का नंबर मिलाइएगा 01274306677, ब्रेडफोर्ड 01274306677। आइए एक और सदाबहार गीत आज के इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये गीत आप सभी सुनने वालों को पसंद आएगा। बहुत ही प्यारा गीत है।

और सामिन अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे, आवाज थी नाइद अख्तर की। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल आपके अपने ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो से 1430 AM पर। आज ये थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी सना, और इस वक्त हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं जिन्हें अपने दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं हम। एक मुद्दत के बाद आजम भाई से मुलाकात हो रही है, बहुत ही मसरूफ रहे हैं ये भी और हम भी, तो आज उन्हें अपने स्टूडियो में हम खुश आमदेद कहते हैं और इनसे आपकी बातचीत भी करवाएंगे थोड़ी देर के बाद। और अब थोड़ी देर में हम चलेंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हम हाजिर रहेंगे। अगर कॉल करना चाहें तो स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं, 01274306677, ब्रेडफोर्ड एरिया कोड है 01274, स्टूडियो का नंबर है 306677। कोई पसंद हो, कोई फरमाइश हो तो ज़रूर बताइएगा, आपकी पसंद को, आपकी फरमाइश को आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बना के हमें दिली खुशी होगी। और आज इस प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो असिस्टेंट हैं तोराब हैदर जी, हमारी बड़ी ख़ास मुआवनत करते हैं। तो चलिए तोराब, अब चलते हैं ब्रेक की जानिब।

0: 14:13 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
5: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट
9: टैक्सी लाइसेंस,
8: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
5: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
5: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
8: UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: और सामिन, अभी आप जुबैदा खानम की आवाज में ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे और आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है जनाब शकील साहब, आपने बेहद शुक्रिया आपका। और गीत के बोल थे कि सयोनी मेरा दिल धड़के, और आप कह रहे थे कि आपका भी दिल आज धड़क रहा है, तो मैंने कहा हाँ मेरा दिल धड़क रहा है आज। स्टूडियो में मेरे साथ ही है ये दिल, और ये मुख्तलिफ जो रेडियो की इंजीनियरिंग है उसमें बहुत ज़्यादा माहिर हैं ये साहब, मेरी मुआवनत कर रहे हैं बार बार, तो आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी तो आप क्या हाल है, ठीक हैं आप खैरियत से?
1: हाँ मैं ठीक हूँ।
0: तो सबसे पहले बताइए कि आज आप स्टूडियो में क्या मदद कर रहे हैं, बताओ ना। अजय स्टूडियो में तो राब हैदर हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी बहुत अच्छी मुआवनत कर रहे हैं, बहरहाल उनसे भी बात होगी। इस वक्त शकील साहब आपकी पसंद हमने क्यों कर रही है मेहदी हसन की आवाज़ में, गीत आपने सुनना चाहा है, आपका कहना है कि आज मेहदी हसन की सालगिरह है तो उन्हें आप ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। आइए मेहदी हसन की आवाज़ को आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। पसंद आपकी पेशकश ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की 1430 AM पर।

0: और सामिन अभी आप पसंद सुन रहे थे जनाब शकील साहब की, बहुत ही अच्छा गीत था। और आपका कहना था कि आज मेहदी हसन की सालगिरह है, तो सालगिरह का आप उन्हें तोहफा दे रहे थे। और अब यूं करते हैं कि मुसर्रत नज़ीर की आवाज़ आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, और इसकी फरमाइश हमें की है रुखसाना आपने और हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त आज़म भाई के नाम आप ये कलाम करना चाह रही हैं। आप दोनों हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और आपकी जानब से आपके सरताज के लिए ये खूबसूरत कलाम कि चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। कलाम है मुस्तफ़ा ज़ैदी का, आवाज़ है मुसर्रत नज़ीर की।
1: मैं फिल्म में गुलुकारा की हैसियत से गई थी, लेकिन एक और रास्ते पर चल पड़ी।

0: मिस्टर पटनायक जैसे ऑफिसर्स की हमें सख्त जरूरत है।
1: Yes,
0: इन्हीं ऑफिसर्स की वजह से तो हमारी इकोनॉमी के पहिए चलते हैं। एक आध तौजी को उसके लिए कुर्बान किया जा सकता है।
2: कोश मूल होटल, राजा जी की फौज से बड़ा राजा जी का खजाना, समझे रामेश्वर सिंह।

0: Beautiful Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
6: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
5: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
6: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
5: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
6: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
5: 07548419678।
6: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
1: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: और सामी ने ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज करेंगे महफिल में खुश आमदेद। और सामीन अगर अभी अभी आपने हमारा ये रेडियो स्टेशन सुनना शुरू किया तो आपको बताते चलेंगे आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो से प्रोग्राम रंगे महफिल, पेशकश है आपके अपने ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की। और ये नशात इस वक्त आप शेफील्ड में सुन रहे हैं लिंक एफएम शेफील्ड के जरिए 96.7 एफएम पर, और यही नशात इस वक्त मिल्सब्रा और टी साइड में CVFM रेडियो के जरिए भी आप सुन रहे हैं 104.5 एफएम पे। और समीन अब वक्त हुआ जाता है कि आप सुनने वालों की लाइव कॉल्स इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब शकील साहब, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से? शकील साहब आपको हमारी आवाज आ रही है?
1: जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन कुछ आवाज है
0: मैं देख रहा हूँ, कुछ पता नहीं। जी अब आपका आवाज सही आ रही है?
1: आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है।
0: जी जी अब मैं थोड़ी सी आवाज बढ़ाता हूँ।
1: जी आपको
0: जी जी आपकी आवाज सही आ रही है।
1: अब आपकी ठीक है?
0: जी जी अब सारे लेवल ठीक मैंने कर दिए, ठीक है। माफ़ चाहता हूँ अभी थोड़ा मसला था। जी जी शकील साहब खुश आमदेद कहते हैं, अब आपकी आवाज हमें बिल्कुल सही आ रही है। हेलो जी शकील साहब, शकील साहब आप लाइन पे ही हैं? जी शकील साहब, हेलो शकील साहब आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है, माजरी चाहते हैं आपसे, आप दोबारा कॉल मिला लीजिए ताकि फिर आपसे बात हो सके। सामिन इस वक्त आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, अगर आप भी आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677, ब्रेडफोर्ड 01274306677।

0: नाम है
1: आशिक,
0: इश्क करता हूँ आशिक, मेरा नाम है ऐश करना, मेरी जान मेरा काम है।

0: और सामिन, आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हमारा छोटा सा टेलीफोन लाइंस का इशू था, अब गालबन हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। आप सभी से इल्तमास है कि अगर आप दोबारा कॉल करना चाहें तो बिस्मिल्लाह आप कॉल मिला सकते हैं। स्टूडियो का नंबर और अभी हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो चुकी हैं सना। अस्सलाम वालेकुम सना, आप खैरियत से ठीक हैं?
1: वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
0: आज बड़ी चहल पहल है स्टूडियो में, और भी मेहमान हैं,
1: सभी को खुश आमदीद। बिल्कुल, आज हमारे आपको बहुत बहुत खुशामदीद है। हमारे बहुत ही प्यारे से गेस्ट आए हुए हैं जो कि इस्लामाबाद से बिलोंग्स करते हैं।
0: जी जी
1: जी,
0: और यूँ है कि आप गजल सुनाइए कोई सुनने वालों के लिए, ताकि हम दिगर भी इस प्रोग्राम को लेके आगे चलें। तो कोई कौन सी गजल है आपके पास?
1: जी सामीन, मेरे पास तो बहुत ही प्यारी सी गजल है, तो चलें आपको एक अच्छी सी गजल सुनाते हैं।
0: जी जी, इनायत।
1: कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे।
0: क्या कहने, फिर से पढ़िएगा, बहुत ही प्यारा शेर है, वाह वाह।
1: कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे। कभी नींद में कभी होश में, कभी नींद में कभी होश में, तू जहां मिला तुझे देख कर, ना नजर मिली ना जबां मिली, यूं ही सर झुका के गुजर गए।
0: क्या कहने, क्या कहने।
1: कभी जुल्फ पर कभी चश्म पर, कभी जुल्फ पर कभी चश्म पर, कभी तेरे हसीन वजूद पर, जो पसंद थे मेरी किताब में वही शेर सारे बिखर गए।
0: बहुत बहुत।
1: मुझे याद है कभी एक थे, मुझे याद है कभी एक थे, मगर आज हम हैं जुदा जुदा। वो जुदा हुए तो सवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, कमी आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए।
0: वैसे सना, ये शेर पाकिस्तान ट्रकों के पीछे अक्सर लिखा होता
1: है। ऐसे ही है बिल्कुल। मैंने सोचा आज हम अपनी पूरी पाकिस्तानी आवाम को एक ट्रक वाला शेर सुना देते हैं।
0: ये सबसे प्यारा शेर इस गजल का यही है, और ये पाकिस्तान अक्सर ट्रकों के पीछे लिखा होता है कि कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर,
1: कमी आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ से गुजर गए।
0: कहते हैं ना कि उन रास्तों पे पहुंचा मैं तेरी तलाश में, उन रास्तों पे पहुंचा मैं तेरी तलाश में, जिन रास्तों पे मेरा कभी भी गुजर ना था।
1: क्या बात है, आप तो बहुत ही बड़े शायर हैं ना, आपके साथ तो हमारा छोटे छोटे शायरों का कोई मुकाबला ही नहीं है।
0: चलिए चंद अशआर मैं भी शामिल करता हूँ कि बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो नहीं, है नहीं।
1: बिल्कुल।
0: बैठे हैं चैन से कहीं जाना तो है नहीं, हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। तुम भी हो बीते वक्त की मानिंद हू बहू, तुम भी हो बीते वक्त की मानिंद हू बहू, तुमने भी याद आना है आना तो है नहीं, तुमने भी याद आना है आना तो है नहीं। और ऐद वफा से किस लिए खायफ हो मेरी जान, ऐद वफा से किस लिए खायफ हो मेरी जान, कर लो कि तुमने ऐद निभाना तो है नहीं।
1: क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
0: अब यूँ करते हैं कि एक गीत सुनने वालों के नाम है, और इसी के साथ ही सभी सुनने वालों को भी दावत है कि अगर आप आना चाहें तो तशरीफ ला सकते हैं, हमारी टेलीफोन लाइन्स अब ठीक हैं।

तुम्हारे सामने अभी आप ये गीत सुन रहे थे, क्या खूब लगती हो, क्या खूब लगती हो। आवाज थी मुकेश की। उम्मीद करते हैं कि आप ये गीत आपको पसंद आया होगा।

0: और सामिन अब यूं है कि हमारे स्टूडियो में रुखसाना मौजूद हैं और ये आज पहली बार माइक पे आ रही हैं और अपने शौहर इनामदार आज़म भाई के लिए बहुत ही अच्छा एक कलाम लेके आई हैं और उनके नाम करना चाह रही हैं। तो अब माइक खोलता हूं और इनसे दरख्वास्त है कि कोई खूबसूरत सा कलाम आप अपने हस्बैंड के नाम कीजिए। जी माइक ओपन है आपके लिए।
1: पहले मैं आप सबको अपनी तरफ से सलाम पेश करती हूँ।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: अब मैं चंद अशआर अपने हस्बैंड के लिए सुनाने चाहूँगी।
0: इनायत आज़म भाई कहिए कि इरशाद इरशाद।
1: तुझे गजल एक नायाब लिखूं, चंद अशआर नहीं पूरी किताब लिखूं, खुद को लिखूं एक उलझा सा सवाल, तुझे सुलझा हुआ जवाब लिखूं।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: मैं हूँ एक बेजान हकीकत, तुझे एक महंगा ख्वाब लिखूं, लिखूं खुद को हर दिल बेजार सा पर तुझको खुशनुमा एहसास लिखूं।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: एक तेरे अलावा कोई दिखता ही नहीं मुझे, एक ये आदत खुद की खराब लिखूं।
0: बहुत खूब।
1: तेरी आंखों की तो क्या ही बात करूं, तुझे देखते खुद को खुशकिस्मत लिखूं।
0: माशाल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। वो किसी का शेर याद आ रहा ना कि या तेरे तज़किरे करे हर शख्स, या तेरे तज़किरे करे हर शख्स, या कोई ना हमसे बात करे।
1: जी।
0: अब यूं है कि ब्रेक का वक्त हुआ जाता है और सुनने वालों से इल्तमास है कि अगर आप भी तशरीफ लाना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आपको बताते हैं। तोराब हैदर जी, तोराब स्टूडियो का नंबर बताइए।
2: 01274-3066-77 14:13 AM
3: And the winner is
4: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER 01274-491-442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, BD94QU 01274-056-014। सोफी ज्वेलर्स।
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future. फ्यूचर।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहाँ कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर।
5: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: और सामीन अब्रेक के बाद एक बार फिर आप सुनने वालों को खुश आमदेद कहते हैं और माजरत खा हैं जनाब शकील साहब से। अब हमारे साथ लाइन पे शकील साहब मौजूद हैं और उनसे हम कलाम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। जी शकील साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो शकील साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? शायद शकील साहब रेडियो ऑन करके कहीं चले गए और हमारी आवाज़ भी हमारे कान में आ रही है। शकील साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है?
1: नहीं, मुझे आवाज़ नहीं आ रही।
0: नहीं, आपकी आवाज़ साहब मुझे आ रही है। जी शकील साहब, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, आप शायरी सुनाइए। हेलो शकील साहब, आपकी आवाज़ हमें आ रही है, आप शायरी सुनाइए। आप गलबन, आपने रेडियो ऊंचा लगाया हुआ है, रेडियो की आवाज़ अगर कम करेंगे इंटरनेट को तो फिर आपकी आवाज़ हमें आना शुरू हो जाएगी। शकील साहब आपकी आवाज़ हमें आ रही है लेकिन शायद हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही। चलिए कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह हम लाइव कॉल्स का सिलसिला जो है इसे जारी रखेंगे बाद में।

0: और देखते हैं कि शकील साहब दोबारा आ चुके हैं लाइन पे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? गालबन आज कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम,
1: आपकी आवाज़ नहीं आ रही है भाई।
0: आप को हमारी आवाज़ नहीं आ रही तो मैं थोड़ी सी आवाज़
1: बढ़ा, मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
0: जी जी, अब आपको आ रही है मेरी आवाज़? अब आ रही है आपको? हेलो,

0: हाँ जी, सामीन कोशिश करते हैं एक बार फिर अपने सामीन से बात करने की। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: अब आवाज कुछ बेहतर है?
1: आवाज आ रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है हसन भाई।
0: अच्छा, मैं आवाज को और इंक्रीज करता हूँ। अब देखिए,
1: अब ठीक है,
0: अब ठीक है, चलिए फिर गुजारा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो खुश आमदेद कहते हैं उस्मान भाई आपको शेफील्ड में, आप हमें सुन रहे हैं।
1: जी जज़ाकअल्लाह, थैंक यू वेरी मच सर, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: जी जी, बहुत शुक्रिया। और सुनाइए, आज के इस प्रोग्राम में आप क्या सुनाना पसंद करेंगे?
1: वैसे तो कोई आज बस ज़हन में कोई नहीं आ रहा था, लेकिन एक दो लाइनें आपको सुना देता हूँ।
0: जी इनायत कीजिए,
1: चलो इस पे ही गुजारा कर लेंगे।
0: जरूर जरूर।

0: जी जी
1: आज भी याद था और याद अभी सुना था तो मैंने कहा चलो आपको सुना दे।
0: जबरदस्त है, हमने बहुत इंजॉय किया कि बहुत ही प्यारा दो गाना था रफ़ी और लता की आवाज़ में। बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात रहती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और समीन अभी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ थे शेफील्ड से, उस्मान भाई बेहद शुक्रिया इनका अदा करते हैं, हमेशा इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं और खूबसूरत से खूबसूरत कलाम पेश करते हैं।

0: और जी हाँ सामीन, इस वक्त लाइन पे हमारे साथ हैं शकील साहब, इन्हें खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: अब आपकी आवाज़ बिल्कुल बेहतरीन आ रही है, और पहले के लिए माजरत चाहता हूँ कि जी जी जी जी अभी उस्मान भाई ने हमारी लाइनें ठीक करवा दी हैं। जी जी, तो इनायत कीजिए शायरी। वालेकुम अस्सलाम।
1: हम आपके मेहमान, उनको भी मेरी तरफ से आदाब।
0: जी जी, उनकी तरफ से आपको भी सलाम।
1: अनवर महमूद खालिद लिखने वाले
0: हैं। अनवर महमूद खालिद।
1: शहर दर शहर फजाओं में धुआं है आपके,
0: शहर दर शहर हवाओं में धुआं है आपके,
1: किससे कहिए कि कयामत का समा है आपके।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: आंख रखता है तो फिर देख से सहमे चेहरे।
0: वाह वाह।
1: कान रखता है तो सुन कितनी फुवा है आपके।
0: क्या कहने
1: थी मगर इतनी न थी को जमाने की नजर, एक कातिल से मसीहा का गुमा है आपके।
0: बहुत खूब।
1: इतना सन्नाटा है कि कुछ बोलने से डर लगता है, सांस लेना भी दिलो जहां पे गिरा है आपके।
0: बहुत खूब बहुत।
1: होंठ सिल जाए तो क्या, आंख तो रोशन है मेरी, चश्मे खून आपका हर इश्क रवा है आपके। खुल के कुछ कह न सकूं चुप्पी मगर रह न सकूं।
0: वाह वाह।
1: खुल के कुछ कह न सकूं चुप्पी मगर रह न सकूं, किस कदर मुश्किल में खालिद मेरी जान है आपके।
0: क्या कहने, लाजवाब है।
1: तो एक सुनाते हैं, मोहसिन आफ्ताब है, उनकी गजल है।
0: जी जी, इनायत कीजिए।
1: जिस तरह धूप का रंगत पे असर पड़ता है, जिस तरह धूप का रंगत
0: पे असर पड़ता है,
1: नफ्स का वैसे ही इबादत पे असर पड़ता है। ऐसे मुझ पर भी तेरे गम के निशान दिखते हैं, जैसे मौसम का इमारत पे असर पड़ता है।
0: बहुत खूब
1: शुक्रिया। सिर्फ माहौल से फिक्रें नहीं बदला करती, सिर्फ माहौल से फिक्रें नहीं बदला करती, दोस्तों का भी तबीयत पे असर पड़ता है।
0: क्या कहने, लाजवाब है, फिर से पढ़िएगा शकील साहब।
1: सिर्फ माहौल से फिक्रें नहीं बदला करते, दोस्तों का भी तबीयत पे असर पड़ता है। दुश्मनों से ही नहीं होता है खतरा लाहक, बागियों से भी हुकूमत पे असर पड़ता है। अब समझ आया सबब मुझको मेरी पस्ती का, अब समझ आया सब मुझको मेरी पस्ती का, मांग घटती है तो कीमत पे असर पड़ता है।
0: क्या कहने क्या कहने, फिर से पढ़िएगा। वाह वाह।
1: अब समझ आया सबब मुझको मेरी पस्ती का, मांग घटती है तो कीमत पे असर पड़ता है। भूख नेकी की लगे या के लगे दुनिया की, भूख नेकी की लगे या के लगे दुनिया की, भूख लगती है तो सूरत पे असर पड़ता है। रिज़्क रुकता है नमाजों के कजा करने से, नियतें बद हों तो बरकत पे असर पड़ता है।
0: क्या कहने, वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब। ये शेर फिर से पढ़िएगा। वाह वाह।
1: रिज़्क रुकता है नमाजों के कजा करने से, नियतें बद हों तो बरकत पे असर पड़ता है। साफ दिखती है बढ़ापे में कजा सच, उम्र के साथ बसीरत पे असर पड़ता है।
0: बहुत खूब।
1: शेयर करते हैं, पास रहने से ही बढ़ती नहीं चाहत मोहसिन, पास रहने से ही बढ़ती नहीं चाहत मोहसिन, फासलों से भी मोहब्बत पे असर पड़ता है।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, और माजरत खाएं कि लाइंस में कुछ खराबी थी जिसके बाद आप पहले तशरीफ नहीं ले पाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और जी सामीन, आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पुराने दोस्त, हमारे भाई आज़म। जी आज़म भाई, क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से हैं। तो शुक्रिया, और माजरत खाएं कि लाइंस में कुछ खराबी थी जिसके बाद आप पहले तशरीफ नहीं ले पाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और जी सामीन, आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पुराने दोस्त, हमारे

0: पेश किया करते थे और हमारी मुलाकातें रहा करती थी। अभी जो गज़ल हम सुना रहे थे वसी शाह की, मुझे
1: बिल्कुल
0: याद है हमने मुशायरा करवाया था और आप ही ने उसकी स्पॉन्सर थे आप, और बेहतरीन हमारी वो महफिल थी। अमजद इस्लाम अमजद भी आए थे, वसी शाह भी आए थे। कुछ यादें पुरानी याद ताज़ा करते हैं।
1: काफ़ी अर्सा हो गया, आई थिंक
0: मेरे
1: शायद
0: ख्याल में 10-12 साल की पहले की बात है,
1: 2012 में था,
0: दो
1: शायद
0: हज़ार बारह कुछ
1: दो हज़ार
0: ऐसा ही था,
1: बारह में
0: बारह
1: था,
0: तेरह की बात है। जी
1: दो
0: जी
1: हज़ार बारह 13-14 साल हो गए हैं,
0: जी
1: काफ़ी
0: जी
1: अर्सा हो गया
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: बिल्कुल, ये आप जो सिस्टर ने पहले सुनाई थी शायरी वसी शाह की, ये उन्होंने उधर ही पढ़ी थी उस टाइम पे
0: जी
1: ना।
0: जी ये उन्होंने,
1: बिल्कुल
0: बल्कि हमने एक शाम वसी शाह के नाम इस तरह
1: नाम किया,
0: प्रोग्राम
1: बिल्कुल
0: किया था।
1: बिल्कुल, उन्होंने अपनी बुक भी लॉन्च की थी आई थिंक उस
0: जी जी
1: वक्त,
0: जी
1: वो उन्होंने उस टाइम, अब बुक का नाम तो मुझे याद नहीं है क्योंकि आपको
0: जी जी
1: ज़्यादा बिजनेस
0: शायरी
1: है
0: की
1: किसी।
0: अब जितनी
1: आंखें
0: भी
1: भीग
0: चंद
1: जाती
0: किताबें,
1: हैं,
0: आंखें भीग जाती हैं गालबन
1: हाँ
0: थी,
1: हाँ
0: आंखें भीग जाती
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: यही थी,
0: सही
1: यही
0: सही
1: उनकी
0: सही
1: थी
0: जी।
1: उस टाइम, तो ये उनकी एक वन ऑफ द टॉप हिट थी।
0: वो उनकी हिट तो वही है कंगन ही। आप
1: हाँ
0: कंगन आपको याद है या नहीं?
1: बिल्कुल याद,
0: जुबानी याद है?
1: याद है याद
0: जुबानी
1: है,
0: नहीं याद,
1: सुना है
0: देखें
1: वसी शाह को वहीं से एक,
0: शोहरत दवाम।
1: काश
0: बिल्कुल
1: में उनके
0: जी,
1: हसीन हाथों का
0: काश
1: कंगन
0: में तेरे हसीं
1: होता,
0: हाथ का कंगन
1: कंगन
0: होता,
1: होता,
0: तू
1: बिल्कुल
0: बड़े प्यार से चाहो से बड़े मान के साथ।
1: बहुत
0: बड़ी अच्छी
1: एक्टिव थी ये
0: गजल
1: गजल, बहुत
0: है,
1: ज्यादा
0: बहुत
1: फेमस
0: ज्यादा
1: हुई
0: एक्टिव
1: थी।
0: थी। दरअसल वो मजीद अमजद की गजल थी बुंदा, उससे उन्होंने वो उसका मजमू लिया था। और वो बुंदा के हवाले से बड़ी उनकी मशहूर जमानत थी, लेकिन फिर इन्होंने उसी तज़मीन की शायरी में, इस चीज़ को कहा जाता है कि तज़मीन करना, उसी काफिया रदीफ़ को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने कही। और ये उससे भी आगे, जिस तरह हमारे जो पुराने गाने हैं पाकिस्तानी, जब इंडिया ने उन्हीं को कॉपी किया तो वो गाने जो कॉपीज थे वो उनसे भी ज़्यादा हिट चले गए।
1: देखा है
0: बिल्कुल
1: ना,
0: ये वही मिसाल
1: बिल्कुल
0: है
1: ऐसा
0: कि
1: हुआ,
0: बुंदा इतनी हिट नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने कंगन उसे बदल के
1: कंगन
0: तो
1: ज़्यादा
0: बड़ी
1: हिट हो
0: शोहरत
1: गया,
0: कमाई। बल्कि इनकी वजह शोहरत वही नज़्म है
1: उनके
0: कंगन।
1: नाम के साथ लिंक हो गया था
0: बिल्कुल ऐसे ही,
1: वसी शाह के
0: ऐसे ही
1: साथ
0: है,
1: कंगन।
0: ऐसे ही है। उसके बाद भी आते रहे हैं, लेकिन सिलसिला ये है कि फिर मुख्तलिफ, आपको पता है यहाँ आदमी
1: बिल्कुल
0: सरगर्मियाँ रहती हैं, लेकिन बड़ा अच्छा वो एक्सपीरियंस था।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: खासी बड़ी तादाद आई थी,
1: बहुत
0: याद है
1: बड़ी तादाद
0: आपको,
1: थी ये,
0: और
1: थी
0: बड़े उनसे प्यार करने वाले
1: तकरीबन
0: लोग थे
1: थिंक
0: उस प्रोग्राम में।
1: 200 के करीब लोग थे
0: और
1: तकरीबन,
0: माशाल्लाह
1: काफ़ी
0: बड़ा
1: लोग
0: बड़ा
1: थे
0: हिट,
1: पल को।
0: हाँ बड़ा हिट प्रोग्राम था। तो उसके अलावा भी आप सिलसिले, मुझे याद है एक टाइम था तो मुख्तलिफ कंपनीज की स्पॉन्सरशिप्स में भी आप और हम मिल के जाया
1: बिल्कुल
0: करते थे,
1: बिल्कुल
0: और कितने वो क्लाइमैक्स थे। हालात किस तरह बदले हैं, ज़रा हम इस चीज़ पे थोड़ी सी गप लगाते हैं कि किस तरह हालात के, वक्त के तकाजे बदलते हैं, हालात की जो सिचुएशन है वो बदलती रहती है, तकाजे बदलते रहते हैं। एक टाइम था तो कुछ डिफरेंट कंपनीज अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी पब्लिसिटी करते थे, लेकिन एक टाइम आया कि सोशल मीडिया ने सब कुछ बदल के रख दिया। जो टेलीविज़न और रेडियो का जो वो मकाम था, वो आज सोशल मीडिया ने उस पर कब्ज़ा कर लिया है।
1: ट्रू,
0: ऐसे
1: बिल्कुल
0: ही है।
1: आई थिंक सोशल मीडिया में
0: आप
1: मौसम
0: क्या
1: भाई,
0: समझते हैं कि ज़िंदगी पे कितने सोशल मीडिया के असरात हैं?
1: देखिए पर्सनल रेफरेंस जो है ना, ये सोशल मीडिया लिंक्ड हो जाता है आपके पर्सनल रेफरेंस के साथ। आजकल एक ट्रस्ट फैक्टर है, अभी अगर मीडिया, नॉर्मल मीडिया में कुछ चीज़ एडवर्टाइज़ होगी तो वो एक पर्सनल रेफरेंस के साथ नहीं आती, जो चीज़ एंडोर्समेंट के साथ आती है ना उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है।
0: ज़्यादा स्ट्रेंथ
1: अगर
0: है,
1: कोई सोशल मीडिया के थ्रू कोई किसी को रेफ़र करता है तो वो एक पर्सनल रेफरेंस आ जाता है,
0: पर्सनल रेफरेंस।
1: तो उस वजह से अब ट्रस्ट फैक्टर करते करते यहाँ तक आ गया कि अगर कोई पर्सनल रेफरेंस से किसी को कोई चीज़ रिकमेंड करता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि ये प्रोडक्ट मैंने ट्राई की, आप इसको ट्राई करें,
0: हाँ,
1: तो वो एक अभी फ़िलहाल तक जो अभी चल रही है चीज़ वो ये पर्सनल रेफरेंस के साथ
0: कल का
1: स्ट्रेंथ है,
0: कुछ पता
1: कल
0: नहीं
1: का
0: है
1: कुछ
0: कि
1: पता
0: कल
1: नहीं।
0: क्या होगा, लेकिन आज तक यही है।
1: देखिए आगे तो देखें, अभी जो दौर है वो AI का दौर है, अभी पर्सनल
0: बिल्कुल
1: रेफरेंस से भी शायद चीज़ें आगे की तरफ चली जाएँ, क्योंकि अभी तो देखें कोई भी कोई चीज़ एक प्रोडक्ट की पिक्चर लेता है तो AI आपको इतना कंपैरिजन करके बता देता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे, किस पे, किस
0: इससे
1: जगह पे
0: भी
1: सस्ती
0: बेहतर ये
1: पड़ेगी।
0: वाला भी है, ये भी जरा देखिएगा,
1: बिल्कुल, देखे
0: बता
1: ना
0: देता है।
1: एक दौर था, मतलब एक सर्च टेक्स्ट फॉर्म में आया था गूगल में, फिर वो यूट्यूब ने टेक ओवर कर लिया, वीडियो फॉर्म में चला गया, अब उसकी अगली फॉर्म अगर आप देखें वो AI आ गई है। तो वक्त के तकाजे हैं हसन भाई,
0: बिल्कुल
1: वक्त के साथ
0: बिल्कुल
1: साथ चीज़ें बदल रही हैं। एक दौर था मतलब टीवी एडवर्टाइजमेंट जो थी उसकी एक स्ट्रेंथ थी, फिर उससे आगे आप देखें,
0: अखबार से शुरू हुआ मसला,
1: बिल्कुल
0: अखबार
1: अखबार से शुरू
0: था,
1: हो, जी
0: अखबार
1: बिल्कुल
0: गया,
1: बिल्कुल,
0: टीवी आया,
1: टीवी
0: टीवी
1: आया,
0: गया, उसके बाद सिलसिले इस तरह चल रहे हैं कि सोशल मीडिया ने
1: सोशल मीडिया,
0: सबको।
1: पर्सनल रेफरेंस कह लें आप,
0: ये बिल्कुल
1: पर्सनल
0: वही मिसाल
1: रेफरल्स,
0: है, ये वही मिसाल है कि जैसे हम कैमरा यूज़ करते थे,
1: जी
0: अलग से
1: बिल्कुल
0: कैमरा यूज़ करते थे, अलग से घड़ी यूज़ करते थे, अलग से हम CD प्लेयर या कैसेट रिकॉर्डर यूज़ करते थे, हम अलग से टॉर्च यूज़ करते थे, फिर
1: बिल्कुल,
0: मोबाइल ने कहा कि मैं सारे आपको एक ही जगह दे दूँ तो मुझे क्या इनाम मिलेगा।
1: तो
0: बिल्कुल वही बात है कि
1: देखिए
0: ज़िंदगी सुखड़ के रह गई है एक मोबाइल फ़ोन।
1: पहले
0: अलग से
1: फिजिकल,
0: लगाओ,

0: You're listening to
1: Bedford Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
7: बालियां अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
7: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
7: आपकी शान
6: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
7: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
7: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
9: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड 01274201679।
9: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: यू आर लिसनिंग टू
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: You're listening to Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काकी की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
7: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
7: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
7: सोफी ज्वेलर्स, 121 ओकलेन BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Trent Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: यू आर लिसनिंग टू
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274 306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
11: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
6: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
5: सोफी ज्वेलर्स?
6: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
5: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
7: बस ट्रक फोकलिफ्ट
8: टैक्सी लाइसेंस,
7: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर।
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
4: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679।
7: saferaider.co.uk UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM. You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
6: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
5: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
5: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
6: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
5: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
6: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
5: 07548419678।
6: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM. You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.